0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सुने
1: रेडियो भेरी एफएम
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: चामल प्रति बुरा 1800, औरामदिन चामल प्रति बुरा 1225, चिनी प्रति किलो 95 रुपियाँ र सूर्यमुखी तेल प्रति पेटी 2860 रुपियाँ। साथै छुट कार्यक्रम असार मसान्त सम्म सञ्चालन हुने भएको हुँदा लाभ लिनुहुन सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौ। हामी कहाँ पौष्टिक तत्व स्तर उन्नति गरिएको चामल पनि पाइन्छ। सम्पर्क खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, विरेन्द्रनगर नगरपालिका 6, गोदाम लाइन, सुर्खेत।
1: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 2.7 मेगाहर्ट्ज।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 1 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: पी पा दो तो पी पा दो ना, पानी बंद जगह करो या पानी चिर खाए।
1: उनके निधा तो

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो झमेला।

0: 6.9 inch को शानदार डिस्प्ले, AI powered कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

गजाननं भूतकरातिसेवितं स्वपीतजम्बूफलचारुवक्षणम् कुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मङ्गलं भगवान् विष्णु।